0: ཁྱི རང སེམས ན ལ ང ཉིད ཅིན ད ལ བའི བར བེ ཡེ ངུ ཅེ ཤང ཁེ ཚབ རོ ཅེ ཡེ ཤོ ཚ ཐབ དོ རང ཁེ ང གུ ཉུ མེ བར བེ
1: ཉེ རང ཐ ཁ ཚེ གོ སམ ཅུ ཡང གེ ང ངུ ནེ གབ ཅིང ཡུ བེ Jean Patrick Yin.
0: Di garche bae geure.
1: Pingje biju dame.
0: Wae. Di garche bae geure.
1: Samsha rin sha.
0: Ji sepsye ni yongdu.
1: Ni tan do rang sepsye ma junge. Jean long su chuza. Tang ju ji bi.
0: Yan xiao chen. Sha ge ma ge zhi zhi yu a.
1: Le ga zhi yu.
0: Le ha zhi yu. Ni ta do rang xu ho tin. Che che de. Bie le xie.
1: 他让个气度，那也脱不。青龙啊，你也来个。你这次啊，让个公司打更小嘛呗。上个季旅途天气不行，顾客在我上面待遇呢。叶小春，我顶这受苦的鬼。没事，你也找我借着时间让着不。让什么呢？我叶小春，谈到的他不懂，我没多么生硬，就是自由了不。
0: 没事。 ये सब तो जख्म तो न्यू में
1: इन्हें रंगे छेवे ले तब जब उधर जाओ मैं भी और बे
0: शे जैसे ने चिलू चिना चुकी हुई क्यों शे इन्हें सब ना तुझे सब न्यू में ये शॉट शक्य ना तब तो सिर्फ तो जैसे न्यू में बे
1: मैं 到哪就能买
0: 这个叶小春叶先生今晚你让苏不苏用用

0: 当个位置坦诚有了吹西边门的三角囊敌人碰马相同居家老皮下压过去就当游泳节先看看有切空机学次里次动画当短球下脚单击两面协议也比过了张雄雄是用三角用力抗击三角用的从头错内罗安镇决议比人游泳节行李中心公平节准备我这些比过所以
1: 说不能把更看上
2: 更看上
1: 但那能不给松干成了一切能别看给三角细胞干事情
2: 这里呢别的那比七年龄当现在顶比七年人生没没事下面能对人写传能随着
1: 沙本土这面按东城街等级东城身边拍卖相同街当有错同名上的落来顶部的奖励每节间谈成送话当中国共产党委员内罗家党这面案昆城市拍卖相同乡党委来家用街五土一人当珍珠街日经参与投入办理
0: 大家公开认识了台湾各省决比沙家地基米在安部下降恰不贴不实际那个强强三百多岁了没阿东孙家顶级短什么信心所论对策将从外界加强研究样新级没了对于强强南西决策来个五个设置度对一把当没强强策路阿经阿一把事张一同的对策那个的没错对下脚第一站参部没把事普马强堂向单位家当院人家顶级短业的大概在一地图拍等写笔拍杂的人了拍杂的藏密旅行党党部这月空了侯玉许心罗年学在银巴当南苏无恋扎不完银空格拍有南苏格三百多岁了密激动主家新纪月三百多岁节黑八千步小羊空格您对能广把西巴马岁罗几个能向永姐对千藏密你从新的图归吧是普马相当相格李西巴侯玉吉沙江的歌没规矩也比那用把音写送把谁空给大伯路宁宫破马相当相得雷盖写版周局人对学一点鸟擦写远第一图狼翠美都美家当美食茫茫美食也叫提的美他写笔车一把下去音写之远人对学一点呢狼翠提的压比当家音路宁家对翠能好预计再引第一图狼翠美都南北的一把写远好预计那呢我做普马相当相格美都是千步美能也不定了你接不约撒江德阳第一档几把是哈桑南大哥雷电这把当罗京先几个盲粗党真这些呢雷电谈及也不只同意谁接送把是
3: 那都是这种事都但是他是对几个他是这个电影前面吧
0: 来往多几呢普马相当相确定看个原账银随即来迎了罗宋德哥的雷盖协查机撒家银德雷盖接不加求个月文章向永姐对称你家家去哪个忙出去得当个解读空得个的那个写呢罗顿信心也不是空来李俊不及比军庆这个空给绿托个门都解决去普马相当向确定看个原章他望多记感谢你慢慢了显得血气引起些呢给家全部写比那么用心你那样我们绿托个门都马英德格的那些掌握也讲满足点的通格才能主所说硬币南外用更多计算吧谁雷信不仅呢当初你也比当个行定里面你也一步破你旅行目的为告诉空地你战队将雄用也吧谁拉望多机让你也一步破你年下旅队才能还将靠本都德格的雷信不脱的才能绝把不怎么都计算吧谁普马相当向了坦桑南头写了年学藏啊一把当他送把当相当中的个李吉巴的准备他送入卡给罗曼他送点家个期每尊黑米级过一学期月他送把该上车人呢当用给这些银行他送雷尼图大把的龙我年学他李嘎写我是
4: 他让你他的银座人的同桌卡给大的人了他怎么过去写了天马热的照顾的这提出छे कब निवाल ता रित क्या रूम दा निवाल ता तक जे सुन जे चेन ते थंजा सुमी ला ते बाल लंबा ला तक कंगे इन्हें ना तो कहे थे तो ता थंजा ने तो सुनी ने ते ने जो की गिनती शेर रे से
0: ता सुन गिनती जे गांव बा बंचा मार्ग गांव ये ने नाम जी जे जे ने तू आ ता सुन ले ने डिंग सुन शेर जी ये यंग सुन मार्ग ये तम जी लो जिन ला जो चे बा डंग लो जा चे मो ने तू जी रंग गुल आंग पमा शांग तंग दो ले ये बा शे达达杨松给他送根地姐姐生长年让你来望为他送狼狈脱学员普马相当哥立即把杨松给得六七大孙比崔经年普马相当的来个写把的永远音马不能有比通密三对呢坦唱松七音来信给通密三对马结巴 跟着宁波客人谈上丁林永吉内修西生不接应西生不是不马相当相隔行住对清宁家家全军政爹爹康德宁波西巴当却当路蓝扎瓦索隆追浪机修用的规制协议就都得到呢三句各种美都一才修更色的巧月
5: 天主君的两个年把概念都能给当用工作的萝卜机的人天当用工作的萝卜也不出去哟
6: 咋天爷给自己的萝卜人呢配给请你压个了肚做那个的做这个他绿东关出去你疼不穷那天还给他东安民族
0: 当问你你如果家当居民爱口味参数不马想当想当问的你家用家安全依然当赞助了单腿熊瓦当在几千年代呢一人当院你家顿就顿业业连跟和他口啊顿就干了七八小时
7: 我这里是海拔最高的边境下
0: 唐山街的种族普马相当西比六一局这个的林立丁松行进去拉上南大吉跟着查的个人